0: Hi Rohingya, I am Professor Yubasar. I am Malaysia Mara, translator. I am the professor at the Arkansas V. Argo Frenotu, Zibar has been a big care. The Kiba, the R contract, Loivada, R Colguje, R Biagurula Hoye, Ahoide, Biano with Jumai, I fold a kibo. Tobade. Manushibia, Anma Vuresine, Izatamara fold like him, Manushibia, Anma of Lura Contaguje, Anma of Lu Contaguriba, the Itara, a beautiful in the cave.
1: Malah di adat kita itu tidak mendukung adanya perkawinan usia anak karena ada kayak persyaratan bahwa harus bisa menenun sebanyak 114-an mungkin ya tenun. Nah, itu yang harus dilakukan sebelum mereka menikah dan itu sekitar usianya di atas 20-an. Namaku Suci Apriani, usiaku 24 tahun. Aku aktivis pencegahan perkawinan usia anak. Aku memulai gitu ya aktivitas untuk ini memperjuangkan terkait tentang pencegahan perkawinan usia anak dikarenakan aku melihat sendiri bahwa kakakku melakukan perkawinan usia anak. Kemudian aku melihat dampaknya sendiri gitu kan ketika keponakanku tidak tinggal dengan orang tuanya. Kemudian di lingkungan sekitarku juga sama. Aku ngerasa bahwa ini harus ada upaya untuk mencegah ini. Ya, aku bergabung ke KPAD pada tahun 2017. KPAD itu Kelompok Perlindungan Anak Desa. Nah, kita keliling dari dusun ke dusun. Jadi dari setiap dusun kita keliling membawa banner. Kan 300 lebih pendata tangan. Nah, di situ ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada ibu-ibu, bahkan remaja juga ikut menandatangani petisi itu. Nah, itu menjadi suatu hal yang membuat kami tuh ngerasa bahwa wah, ini ternyata banyak yang mendukung dan ini menjadi suatu hal yang mulai menjadi star gitu ya, star untuk kami.
2: Oh, choti umar ki shaadiyan kar rahe hote hain, wo ye kehte hain ki ghurbat ki wajah se. लेकिन हमारा जो जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि बेटी चाहे किस भी क्लास में पैदा हो उसको बोझ ही समझा जाता है. मेरा नाम मारवी अवान है. मैं हैदराबाद सन से ताल्लुक रखती हूँ. मैं औरतों और बच्चों के हकूक के हवाले से काम करती हूँ. सबसे अहम है कि खवातीन को उनके हकूक के बारे में और कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उनको उनको उनको उस हवाले से नॉलेज देना. छोटे छोटे गांवों में, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाता है, हमारी टीम जाती है, हमारे रजाकार जाते हैं. बहुत सारी छोटी उम्र की शादियां हमने बहुत कामयाबी से रोकी हैं और उन बच्चियों को उनका बचपन वापस दिया है, उनकी तालीम का हक उनको वापस दिया है.

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज होता है, उस पर छोटी उम्र की शादियाँ होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada merasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan.

शादियां कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि गुर्बत की वजह से। लेकिन हमारा जो जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि बेटी चाहे किस भी क्लास में पैदा हो उसको बोझ ही समझा जाता है। मेरा नाम मारवी अवान है, मैं हैदराबाद सन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं औरतों और बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करती हूँ। सबसे अहम है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में और कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उनको उनको उनको उस हवाले से नॉलेज देना, छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाता है, हमारी टीम जाती है, हमारे रज़ाकार जाते हैं। बहुत सारी छोटी उम्र की शादियां हमने बहुत कामयाबी से रोकी हैं और उन बच्चियों को उनका बचपन वापस दिया है, उनकी तालीम का हक उनको वापस दिया है।

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज़ होता है, उसमें छोटी उम्र की शादियां होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.